अरे बॉम्बे से ट्रेन छुटी प्रेम नगर में रुकेगी, अरे खास सफर है भैया, वाह